0: कि एक समय तमो बने दे बाहर मुझे माता से रिता थी फल नो नहीं बोले अफेटा जो बता साउदी बाकुम्बा से नहीं मुझा बत्ती में पिसन
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: किरीक्षण तमोगमे बाहुगमात सरितत्यं फल नो नियोबले अफेत जगता साउदी बाकुंडा सिनेमा पूजा बत्तीन विसन
1: Ovintis, nemak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.